तना छेरे रंग पी कोयो जो बुलकन लोपी तनकमो बारे अभी बुलंद दिन तनकमो